कानी अंगा सिनाई सुपैमुयु न्युकाता चिंगा चिंगा वा न्युका कांता का परिपी पुयावांगी सुमा मामा मामा मरिया ने बेंदिस्यांगी कामशुति याया चूरी स्पिरितु सांतो शुतिपि अमीन।

कानी अंगासी नाई सुपाई मुयुं न्युकाता चिंगा वा न्युका कांता का पारिक पीं उया वांगी सुगमा मामा मामा मारिया ने बेंदिस्यांगी कामशुती याया चूरी स्पिरितु सांतो शुतीपी अमीन।